मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सुप्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही समय में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रतिनिधि वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 15 सेकंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए मुकेश के स्वर में।

0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वच्छता विषय पर डॉक्टर किशोर अरोरा का आलेख। वाचक स्वर आभा गुप्ता का है।
1: गर्द से मुक्त साफ रहने की अवस्था को साधारणतया स्वच्छता कह सकते हैं। इसमें इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं। स्वच्छता को मानव के नैतिक गुणों में सम्मिलित कर ईश्वर को पाने की राह से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मानव स्वास्थ्य और सुंदरता के साथ साथ स्वस्थ समाज के निर्माण को भी शामिल कर सकते हैं। स्वच्छता शुद्धता से भिन्न होती है। भौतिक नैतिक रूप से प्रदूषकों से निजात पाना स्वच्छता हो सकती है, परंतु शुद्धता किसी व्यक्ति विशेष या पदार्थ की गुणवत्ता से संबंधित है। प्रायोगिक तौर पर स्वच्छता अथवा व्यवहारिक तौर पर स्वच्छता हाइजीन है और इसे व्याधि से मुक्ति से संबंधित किया जा सकता है। हमारे कार्यस्थल, घर, हमारे शहर आसपास स्वच्छता प्रदर्शित हो सकती है, पर सामान्यतः शुद्धता से संबंधित कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं हो सकता। एक मान्यता के अनुसार स्वच्छता हमारे जीवन में सांस्कृतिक मानों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे हमारे समाज का निर्माण होता है। सामान्यतः किसी वस्तु पदार्थ की, यहाँ तक कि हमारे स्वयं की स्वच्छता भौतिक रूप से झाड़ने, पोंछने और जल से धोने, स्नान आदि से संबंधित है। भौतिक रूप से स्वच्छता को पाने के लिए समस्त उपाय हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में अपनाए जाते हैं। हम नित्य प्रति स्नान करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, घर का सामान साफ करते हैं, भौतिक अवस्था की कई चीज़ों को धोते भी हैं। ये सब हम अपने और अपने आसपास भौतिक रूप से स्वच्छता को पाने हेतु करते हैं। कई कार्य नित्य प्रतिदिन, कई सप्ताह एवं कई कुछ समय अंतराल के पश्चात किए जाते हैं। ऐसा किया जाना आवश्यक भी है। इससे हमारा घर, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है और हम भी स्वच्छ रहते हैं। यदि हम अपने घर से बाहर होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, तो शायद अपना ये स्वच्छता अपनाने का कर्तव्य, अपनी आदत भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल की स्वच्छता को भी बनाए रखना हम भूल जाते हैं। ये कदापि ठीक नहीं। हमें ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि घर के बाहर मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा कार्यस्थल, मेरा देश जब स्वच्छ रहेगा, तभी मेरी, मेरे परिवार की, मेरे समाज की स्वच्छता बनी रह पाएगी। इस सब के लिए मेरा भी उत्तरदायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छता स्वस्थ रहने का मूल मंत्र भी है। हम सभी स्वस्थ रहेंगे यदि हम स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ रहने के लिए हमारी वैचारिक स्वच्छता भी अति आवश्यक है। विचार स्वच्छ होंगे, दायित्व बोध होगा, तभी हम स्वयं को और अपने आसपास को स्वच्छ रख पाएंगे और इससे हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश सब स्वस्थ रहेगा। हम सब किसी न किसी कार्य को संपादित करते हैं, किसी न किसी व्यवसाय से, सेवा से अपने जीवन यापन के लिए जुड़े रहते हैं। अर्थात हम सब किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं और ये आवश्यक भी है। इससे प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हम अपने समाज, अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। अर्थात हम व्यस्त रहते हैं, पर अपने व्यस्ततम समय में, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं अपने आसपास, घर के अतिरिक्त शहर, मोहल्ले, देश की स्वच्छता के बारे में अपने दायित्व को भूल जाते हैं। इस राह पर स्वयं कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसे भी अपने दैनिक दायित्वों में शुमार करना, अपनी आदतों में शामिल करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। अंत में सारांश के रूप में हम सब इन पंक्तियों को आत्मसात कर अपने जीवन में उतार लें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।
0: अभी आपने चिंतन में सुना स्वच्छता विषय पर डॉक्टर किशोर अरोरा का आलेख। वाचक स्वर आभा गुप्ता का था। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज सुनिए कम लागत अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर एसएस चौधरी से सामयिक चर्चा।
1: किसान भाइयों, हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोएं उससे हमको अधिक से अधिक लाभ मिले, और ये तभी संभव है जब हम सही समय पे बोनी करेंगे, सही समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीक है उसका खेती में ठीक से प्रयोग करेंगे।

0: तभी हम कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि फसल की लागत लगातार बढ़ रही है, इसलिए खेती में मुनाफा कम है। तो हम आपको बताएं कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और कम लागत में अच्छा से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि समय पे तो हम बोनी करें, फिर उन्नत बीज कृषि अनुसंधान संस्थानों, पंजीकृत संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, इनसे ही लेना चाहिए और खुला बीज न लें। फसलों को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कवकनाशी, एग्रोसांजियन, थायरम, कैप्टान, इसकी 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज में मिला करके यदि हम उपचारित कर लें तो करीब 50-70% रोग कम किए जा सकते हैं जो फसलों में लगते हैं। इसी तरह से कीट नियंत्रण के लिए समन्वित, यानी जिसको हम कहते हैं समन्वित कीट नियंत्रण प्रबंधन तकनीक, इसको अपनाएं। रासायनिक दवाएं हम कम डालें, इनकी जगह नीम पाद कीट भक्षी कीट हैं और जीवाणु, इनका ज्यादा से ज्यादा खेती में प्रयोग करें। इसी तरह से जो घनी बुवाई कहीं कहीं हो जाती है तो हमें निराई का खर्च करना पड़ता है, अच्छा ये रहता है कि हम सही बीज का प्रयोग करें, उचित पौध संख्या बनाए रखें और जो बोनी है वो कतारों में ही करें, तो इससे काफ़ी कुछ खर्च को कम किया जा सकता है। बीज की मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, कतारों में बोने से खरपतवार के नियंत्रण में भी सुविधा रहती है और जो बोनी करेंगे वो लाइन से यदि करेंगे तो सिंचाई आदि बहुत सी खेती की क्रियाएं हैं उनको करने में सुविधा रहती है। फिर फसल चक्र अपनाना भी बहुत जरूरी है। यदि फसलों को बदल बदल करके हेर फेर करके हम बोते हैं तो फिर क्या है कि जो फसलों में कीट लगते हैं, कीट और रोग लगते हैं, उनकी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम फसलों को हेर फेर करके यानी फसल चक्र की मदद जरूर लें। पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, इन पद्धतियों को अपनाएं, इससे करीब 70% पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह से समन्वित पोषक तत्वों द्वारा आवश्यक पोषण दें, अर्थात फसलों को आवश्यक पोषण तत्व रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक पदार्थ और जैविक पदार्थों को मिला कर दें, इससे उपज और भूमि की उपजाऊ शक्ति टिकाऊ बनी रहेगी। बीज दवा खाद क्रय करते समय गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी का परीक्षण कराकर ही एक संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करें। श्रम और लागत कम करने के लिए सदैव उन्नत कृषि यंत्रों का ही प्रयोग करें तो काम जो है तकनीक से ही होगा। कृषि में प्राकृतिक जोखिम कम करने के लिए कारगर उपाय जैसे एकांतर कृषि पद्धति, कृषि वानिकी को अपनाएं। इस पद्धति को अपनाने से क्या होता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है, पशुओं को चारा भी मिल जाता है। इसी तरह से कृषि विविधीकरण को अपनाएं तो इसके जो खेती के साथ साथ दूसरे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, तो इन सबको यदि अपनाएं तो एक तो खेती में जोखिम कम रहता है और दूसरी फसल से कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अनाज का भंडारण। जो भी हमें उत्पाद मिले उसका सही समय पर यदि भंडारण करें, उच्च तकनीक से करें, तो फिर अनाज बर्बाद नहीं होगा और अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे तो किसान भाई हमारी खेती में लागत कम आएगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना कम लागत अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर SS चौधरी से सामयिक चर्चा। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:50 होने को हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। सबसे पहली सूचना की ओर ध्यान देंगे। नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते कई ट्रेनें हैं जो परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। उन कुछ ट्रेनों की जानकारी हम आपको देते हैं। यदि आप भी उन ट्रेनों से ट्रैवल करना चाहते हैं आगामी दिनों में तो समय सारिणी और परिवर्तित मार्ग देखकर ही ट्रैवल की योजना बनाएं। सबसे पहले है 12630 निज़ामुद्दीन यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये 15 मई को डाइवर्टेड रूट से चलेगी। 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस 15 से 17 मई तक। 11078 झेलम एक्सप्रेस 14 से 16 मई तक। 20657 हुबली निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 15 मई। और आखिरी है 20658 निज़ामुद्दीन हुबली 17 मई को। ये पांचों ट्रेनें अपने परिवर्तित मार्ग से होकर जाएंगी। कुछ रोज़गार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहली रोज़गार सूचना है MPESB ने हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 1200 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 7 मई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि 21 मई 2026 रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, अदर कैटेगरीज के लिए 45 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप MPESB की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से पूरे जिले भर में संचालित हो रहा है। आपके घर पर भी प्रगणक आए होंगे और अभी प्रारंभिक तौर पर आपके मकान की, आपके पास कितने टू व्हीलर्स हैं, कोई लैपटॉप है या नहीं, मोबाइल कितने हैं है या नहीं, और आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, इस तरह की कुछ जानकारियां आपसे मांगी गई होंगी और आप में से बहुत से लोगों ने वो जानकारियां दे भी दी होंगी। प्रगणक आएँ तो कृपया उन्हें सही जानकारी प्रेषित करें। ये जनगणना और ये जानकारी भविष्य में सरकार को योजनाएँ बनाने के लिए, लोगों के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी साबित होती है। कुछ और रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। राजस्थान टीचिंग एसोसिएट रिक्रूटमेंट RSSB ने 3,540 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 में 276 पदों के लिए कोल इंडिया ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 7 जून 2026 से 7 जून 2026 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम आयु इसमें नील रखी गई है और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप कोल इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर ग्रेड बी के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिकतम आयु 30 वर्ष और न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह आवेदन 20 मई 2026 तक किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, मध्य प्रदेश गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए MPGFMS ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन 11 मई से शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप MPGFMS की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए CRPF ने 9,195 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 20 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे और अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 वर्ष आयु सीमा है और बाकी अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। CBSE ने CTET के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 11 मई से शुरू हुए हैं और 10 जून 2026 तक किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7 हिंदी में समाचार आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही समय में रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम

0: छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान यत् केंद्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबंधनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 और 20 सेकंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 7:20 से श्रोता सुन सकेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। समाचार प्रभात प्रातः 8 और मॉर्निंग न्यूज़ प्रातः 8:15 पर दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नारायण सिंह कुशवाहा व साथियों के स्वर में कुछ लोकगीत प्रातः 8:30 पर। इस घंटे की खास खबरें प्रातः 8:58 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रातः 9 सुना जा सकेगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गीतिका उमड़ेकर से राग भैरव में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे महेश कुमार विशोपिया। प्रातः 10 जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी।

प्रातः 10:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर बाद 12:58 पर 2:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। सायं 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे स्प्रिंकल एवं टपक सिंचाई की उपयोगिता, किसान सम्मान निधि, साथ ही आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह।

श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज का कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और 1-1 सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। गिल दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सिचुएशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर ID बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर ID के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक ID प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज। इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में CM हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, EKYC, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:21 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज़ों में। सचिन जिगर का संगीत, समीर अंजान और प्रिया पंचाल का लिखा। फिल्म है शोर इन द सिटी।

अभी आपने सुना फिल्म दम मारो दम का ये गीत। इस गीत को लिखा था जयदीप साहनी ने, संगीत था प्रीतम का, गायक कलाकार थे ऐश किंग और सुनिधि चौहान।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। जलीस शेरवानी का लिखा, साजिद वाजिद का संगीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म मुझसे शादी करोगी।

0: अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का, गायक थे उदित नारायण और अलका याग्निक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल

0: बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस।

फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, गायक हैं सोनू निगम और अलका याग्निक, साथ ही इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे नाम से ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का, गायक थे उदित नारायण और अलका याग्निक। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म सोल्जर से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, गायक हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म शेरशाह ये गीत। इस गीत को लिखा था तनिष्क बागची ने, संगीत था जसलीन रॉयल का, गायक कलाकार थे जसलीन रॉयल और बी प्राक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
5: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
9: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
10: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
11: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
12: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
13: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
14: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines.
16: Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नारायण सिंह कुशवाहा व साथियों के सुर में उनके गाए कुछ लोकगीत। अब सुनिए ये गारी।

0: अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लोक संगीत का कार्यक्रम इस समय प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं नारायण सिंह कुशवाहा व साथियों के सुर में गाए कुछ लोकगीत। अब सुनिए ये चौकड़िया।

श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नारायण सिंह कुशवाहा व साथियों के गाए कुछ लोकगीत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री के सात सुझावों को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इसके अलावा श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप का उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराया। आज शाम गुजरात और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण से। अब हम आपको पिछले कुछ दिनों में खेल के क्षेत्र में संपन्न हुए कुछ इवेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं और ऐसे कुछ एथलीट्स से भी का परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को कुछ इवेंट्स में गोल्ड मेडल और कुछ इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। सबसे पहले हैं कुश मैनी। आप फॉर्मूला F2 के ड्राइवर हैं और आपने फॉर्मूला F2 में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया है। आपके परिश्रम और सफलता को हम नमन करते हैं।

0: इसी प्रकार से अभी हाल ही में शंघाई में चल रहे विश्व कप तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के प्रतियोगिता में भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद ने रिकर्व इवेंट में फेवरेट और लोकल मेज़बान चाइना को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह मेडल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि रिकर्व कैटेगरी में जनरली साउथ कोरिया और चाइना का डोमिनेंस रहता है, लेकिन अब भारत की बेटियों ने जीतकर बता दिया है कि अब भारत भी पीछे नहीं है। आपकी इस उपलब्धि से हमारा ओलंपिक्स में रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपकी जीत को हम सलाम करते हैं। साथ ही अगली है कोमल लोहार, जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, वेट लिफ्टिंग में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एशियन चैम्पियनशिप में भारत की टैली में स्थान बनाया है, मतलब कि भारत को टैली में स्थान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया है। हम तीनों ही खिलाड़ियों, एक टीम और दोनों ही खिलाड़ियों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करते हैं और हमें आशा है कि आप आने वाले ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल अवश्य जितवाएंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अब हम आपको एक बेहद ही संवेदनशील विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त नागरिकों से अपील की है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते पूरे विश्व में फ्यूल क्राइसिस हो रहा है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी देशवासियों से अपील की है कि हम पेट्रोल और डीजल का खर्च कम करें, का उपयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग करें, आगामी एक वर्ष तक विदेश घूमने ना जाएं और सोना ना ही खरीदें तो बेहतर होगा। इससे हम लगभग कई लाख करोड़ की जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है उसे सालाना रूप से बचत कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भंडारण में अपना सहयोग कर सकते हैं। आपके आसपास के परिक्षेत्र में यदि कोई सामान लेने जाना हो तो पैदल भी जाया जा सकता है। ऐसा करके हम स्वयं की भी बचत करेंगे और स्वस्थ भी रह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 बिंदुओं पर हम सभी देशवासियों से अपील की है। वो 7 बिंदु कौन कौन से हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, यानी कि पेट्रोल और डीजल यानी पूरा ही फ्यूल एक क्राइटेरिया हम उसमें रख सकते हैं कि पूरे फ्यूल को कम से कम उपयोग करें। अत्यावश्यक है तो अवश्य उपयोग करें, लेकिन अत्यावश्यक नहीं है तो उपयोग ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज, जिन सिटीज़ में मेट्रोज हैं वहाँ मेट्रोज का उपयोग करें, जिस सिटीज़ में पब्लिक बसेस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पब्लिक बसेस का उपयोग किया जाए। अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, जैसा हमने आपको पहले बताया कि एक वर्ष तक यदि आवश्यक नहीं है तो सोना बिल्कुल मत खरीदिए। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दीजिए। कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन को भी थोड़ा कम कीजिए। फॉरेन ट्रेवल को एक वर्ष के लिए टाल दीजिए। इसके साथ ही स्वदेशी पर जोर दीजिए, मतलब कि फॉरेन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ना खरीदिए और जो स्वदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदिए। नेचुरल फार्मिंग पर जोर दीजिए और जो अब हमारा उर्वरकों पर डिपेंडेंसी है उसको 50% तक कम कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का हम सभी देशवासी सम्मान करते हैं और आशा भी करते हैं कि हम सभी इन 7 बिंदुओं पर खरे उतरेंगे और देश के हित में अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही श्रोताओं, एक न्यूज़ जो अभी पिछले कुछ दिनों आप सभी सुन रहे थे, लगातार आप सोशल मीडिया

और न्यूज़ चैनल में सुन रहे होंगे हंटा वायरस के बारे में। आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आज हम देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि अटलांटिक ओशियन में एक शिप है जो केप वेर्डे आइलैंड से कैनरी आइलैंड तक के लिए जा रहा था। अटलांटिक ओशियन में वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो केप वेर्डे आइलैंड के सबसे निकट है वो है सेनेगल, यहाँ से वो शिप ने चलना शुरू किया था और वो कैनरी आइलैंड तक जाता। केप वेर्डे आइलैंड में दरअसल 10 देशों का समूह आता है, अफ्रीकन पूरा रीजन है उसमें 10 देशों का समूह है। ये दो भागों में बटे हैं, बेरला बेंटो और सोला बेंटो। अब हुआ क्या कि ये जो शिप था उसमें हेंटा वायरस के कुछ लक्षण देखे गए और उससे कुछ मरीजों की मृत्यु भी हो गई। ये जो पहली बार हंटा वायरस है वो कोरियन वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशन के सिपाहियों में 1951 से 53 के बीच में पाया गया था। इसकी 1973 में डेडली वायरस यूएन के द्वारा इसे घोषित किया गया। साउथ कोरिया की एक नदी है हंटा, उसके नाम पर इस वायरस को रखा गया है। अब इसकी वायरोलॉजी की बात करें तो ये माइस यानी चूहों से फैलता है और जूनोटिक ट्रांसमिशन का ये वायरस है। चूहों और डियर्स के सलाइवा या यूरिन उनका जब हवा के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस हवा में आता है और हवा से ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है और हमको इन्फेक्ट करता है। इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखा गया है। और इसके सिंड्रोम यानी अटैक करें तो ये दो प्रकार से अटैक करता है। पल्मोनरी सिंड्रोम जो हमारे लंग्स में इफेक्ट करता है, इसकी जो मात्रा है वो यूरोप में देखी गई है। और रीनल सिंड्रोम जो किडनी पर इफेक्ट करता है, इसके जो केसेस हैं वो अमेरिका में देखे गए हैं। इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है, क्वारंटीन ही इसका एकमात्र इलाज है।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। आप देख रहे हैं कि गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है और मौसम का जो हाल है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप खुद को और अपने घर को नेचुरली ठंडा रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका खुद को ठंडा रखने के लिए कि एक कॉपर के ग्लास में एक पान का पत्ता लीजिए और उसको पानी में भिगोकर ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। अब कॉपर के ग्लास में पानी लेना है, उसमें पान का पत्ता लेना है और उसको ओवरनाइट के लिए सोख होने के लिए छोड़ दीजिए। अब सुबह तक क्या होगा, वो जो पानी है वो एल्कलाइन हो जाएगा और उस पानी को खाली पेट उस पानी का सेवन कीजिए। यह पानी आपको अंदरूनी रूप से ठंडा रखेगा, आपकी बॉडी हीट को कम करेगा, एसिडिटी ठीक करेगा, आपके पीएच को बैलेंस करेगा, इसके साथ साथ आपके इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करेगा और आपकी स्किन के लिए भी बेहद अच्छा होगा। तो एक पान के पत्ते को यदि कॉपर में सोक करके रखा जाए तो देखिए उसके कितने सारे फायदे हैं। अब आपको बताते हैं किस प्रकार से आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई की एक आईएएस ऑफिसर हैं, सुप्रिया साहू जी। आपने चेन्नई के घरों को नेचुरली 5 से 8 डिग्री तक ठंडा कर दिया अपने एक आइडिया से। वो आइडिया क्या था कि तमिलनाडु के अंदर अर्बन हीट मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंदर आपने क्या किया, कूल रूफ इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसमें छत को सोलर रिफ्लेक्टेड वाइट कलर से पेंट किया जाता था। शुरू में तो लोगों ने बहुत आपत्ति जताई, झगड़े भी हुए, लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि क्या इस तरह के पेंट से घर ठंडा भी रह सकता है। जब आपने कड़ाई दिखाई और घरों की छत को ठंडा के मतलब ठंडा करने से मेरा मतलब है कि वाइट टॉपिंग की, उस पेंट की, वाइट पेंट की जब टॉपिंग की और पूरे एरिया में जब ये हो गया, तो ये पाया गया कि घरों के भीतर का जो तापमान है वो 5 से 8 डिग्री तक कम हो गया। आपकी इस पहल के लिए यूनाइटेड नेशन ने आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हम आपकी इस पहल को भी सलाम करते हैं। श्रोता, आपने देखा होगा कि जो कीड़े होते हैं, यानी उड़ने वाले जो कीड़े, इंसेक्ट्स जो हैं, वो लाइट की तरफ ही जाते हैं। कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों कि ये लाइट की तरफ ही जाते हैं, अंधेरे की तरफ क्यों नहीं जाते? तो ये जो मिस्ट्री है ये बहुत दिन से अनसॉल्व थी। अभी कुछ दिन पूर्व नेचर कम्युनिकेशन ने एक रिसर्च पब्लिश की है जिसमें उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि 400 मिलियन सालों से जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो रोशनी को अपनी पीठ करके उड़ रहे थे और जो रोशनी का सोर्स था वो था सूर्य यानी सन। अब वो पीठ करके कहीं भी उड़ते सूर्य की रोशनी में, तो क्योंकि सूर्य तो सर्वदा व्याप्त है तो सूर्य की रोशनी उनको हर जगह दिखाई देती थी। अब जब मानव आया तो हमने आर्टिफिशियल लाइट बना दी। अब आर्टिफिशियल लाइट जब बनाई तो इंसेक्ट्स ने हर लाइट को सूर्य ही समझ लिया, वो आज भी सूर्य ही समझते हैं। तो इसलिए वो लाइट को जब पीठ दिखाकर उड़ने की कोशिश करते और थोड़ी देर बाद अंधेरे में पहुंचते तो फिर वापस लाइट की तरफ आते, क्योंकि लाइट का सोर्स चाहिए उड़ने के लिए उनको। तो ऐसे क्या हुआ कि जब हमने आर्टिफिशियल लाइट बनाई तो वो आर्टिफिशियल लाइट को सूर्य समझ बैठे और उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमने लगे। इसीलिए जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो लाइट के चारों तरफ घूमते हैं।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, अहंकार यानी एरोगेंस एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। अब आपको अहंकार पर बेस्ड एक घटना बताते हैं। कालिदास, जो विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके दरबारी थे, अपने बुद्धि बल का उन्हें बहुत अहंकार था। एक दिन शिकार के लिए विक्रमादित्य के साथ जंगल में गए और भटक गए। एक झोपड़ी वहाँ बनी हुई थी, झोपड़ी के निकट गए, बहुत प्यास से थे, तो झोपड़ी में से एक बूढ़ी अम्मा निकली, उनसे उन्होंने जल मांगा। तो उन बूढ़ी अम्मा ने कहा, पहले अपना परिचय तो बताओ, तब जल मिलेगा। अब राजा तो अपना स्वयं परिचय नहीं देता। तब कालिदास कहते हैं, अभी चर्चा बड़ी ध्यान से सुनिएगा, तब कालिदास कहते हैं कि गुप्त बात करते हैं और अम्मा से कहते हैं कि अम्मा सुन, हम यात्री हैं। तो अम्मा ने कहा, तुम यात्री नहीं हो सकते, यात्री तो केवल दो हैं, सूरज और चंद्रमा। अब कालिदास का दिमाग ठनका, फिर वो बोले, हम अतिथि हैं। अम्मा बोली, अतिथि भी दो हैं, धन और यौवन। धन आता है चला जाता है, उसी प्रकार से यौवन भी आता है और चला जाता है। हम परदेसी हैं, कालिदास बोले। अम्मा बोली, तुम परदेसी भी नहीं, परदेसी भी केवल दो, जीवात्मा और वृक्ष का पत्ता। आत्मा यानी जो हमारे शरीर के भीतर है, आई है और चली जाएगी। फिर कालिदास बोले कि हम क्षमावंत हैं, यानी क्षमा करने वाले। तब अम्मा बोली कि तुम क्षमावंत भी नहीं हो, क्षमावंत केवल दो हैं, पृथ्वी और नारी। पृथ्वी जिस प्रकार से उसके ऊपर कितने ही भार क्यों ना पड़ जाए, कितना ही अत्याचार क्यों ना करे, सभी प्रकार से माफ़ कर देती है। और नारी यानी स्त्रियाँ हमेशा पीड़ा सहती रहती हैं और माफ़ करने की गुंजाइश रखती हैं। फिर बोले कि हम राजा हैं। तो अम्मा बोली, तुम राजा भी नहीं, राजा केवल कौन, दो लोग, इंद्र और यमराज। फिर कालिदास कहते हैं कि हम जिद्दी हैं। तो अम्मा बोली कि तुम जिद्दी भी नहीं हो, जिद्दी भी केवल दो ही हैं, बाल और नख, जिन्हें कितना ही काटो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। कालिदास अम्मा से कहते हैं कि अम्मा हम गरीब हैं। तो अम्मा बोली, तुम गरीब भी नहीं, गरीब भी केवल दो, एक बकरी और एक कन्या। तो हम फिर कालिदास कहते हैं कि अम्मा हम हार गए। तो अम्मा कहती है, तुम हारे भी नहीं हो, हारे भी केवल दो, एक कर्जदार और एक वधू का पिता। तब कालिदास कहते हैं कि अम्मा हम मूर्ख हैं। तो अम्मा बोली, तुम मूर्ख भी नहीं, मूर्ख भी केवल दो, एक अयोग्य राजा और एक दरबारी। तो एकदम से कालिदास बोल उठते हैं कि हाँ अम्मा, हम वही हैं, हम दरबारी ही हैं। तब कहते हैं कि वो अम्मा कौन थी। तो वो बूढ़ी अम्मा जो थी, वो माता सरस्वती थी, जो कालिदास का अहंकार तोड़ने के लिए आई थी। कहने का तात्पर्य ये था इस चर्चा के ज़रिए कि आपका अहंकार जितना बड़ा होता है, आप समाज में उतना ही आपका कद छोटा होता चला जाता है। जितना आप सौम्य रहेंगे, उतना ही चारों तरफ खुशियां बांटते रहेंगे और उतना ही आपका कद समाज में अपने आप ऊंचा होता चला जाएगा। इसलिए अहंकार को साइड में रखिए और सौम्यता के साथ सबसे मिलिए। अपनी सौम्यता का भी परिचय दीजिए, शालीनता का भी परिचय दीजिए।

श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था, आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतिका उमड़ेकर से राग भैरव में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार विशोपिया।

श्रोताओं, अभी आपने शास्त्रीय संगीत में सुना गीतिका उमड़ेकर से राग भैरव में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश कुमार विशोपिया। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है। अब से कुछ ही समय में जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्रीद्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगर मालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगर मालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित

0: किया गया। इस समारोह में एसडीएम व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन दो औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का। आकाशवाणी का ये
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05:50 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। एक बार फिर से सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश है आप सभी की, आप हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बश्क, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम, नजमुल हौदा, कोयल बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, सई शाह सोनवने, श्री गणेश अविका आठ श्री रामपुर से अशोक कुम्हार, अविका जीविका, सानू और अर्चना कुम्हार, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका विशाखा, कुम्हार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अनु मलिक का संगीत फिल्म पाप से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम,

न पता फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है, ई ब्लॉक तानसेन नगर ग्वालियर से सौरभ बंसल, रिंकी बंसल, वैदिक बंसल और रेयान बंसल की। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म अनोखी रात से ये गीत। इस गीत को लिखा है इंडीवर ने, संगीत है रोशन का, गायक है मुकेश कुमार।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए

0: 4257027068। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हमें संदेश लिखते हैं, आप हैं ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेनू, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश, सुनील पाठक। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला शिवास, अनीता, पुष्पा शिवास, अंजु योगिता शिवास, राजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बाधवानी। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घट्टे, संगीता, साक्षी, जयश्री महलेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबुल, पीवी कुलथे। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म मन मर्जियाँ का ये गीत। इस गीत को लिखा है शैली ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, गायक हैं एमी विर्क और शाहिद माल्या।

अभी आपने सुना जावेद बशीर को फिल्म भाग मिल्खा भाग में इस गीत को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। फरमाइश करता थे आप सभी आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माही मलिक, अडार नानघाट गांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण और इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगली फरमाइश है आप सभी की आप हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार वोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल, नीति सुरभि अश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक सीमा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म जर्सी का ये गीत। इस गीत को लिखा है शैली ने, संगीत है सचेत और परंपरा का, गायक है सचेत टंडन।

0: अभी आप सुन रहे थे वेकअप सिट से इस गीत को। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, गायक थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य, फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ग्राम पंचायत बठैना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्रेखा, ज्योति, प्रहलाद, उमेश और धनेश्वरी वर्मा, शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल साहनी, मुक्कम पोस्ट फुल चिंचौली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और पूरा मुलाणी परिवार।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए। पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाए। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री, कीर्ति भारती, अनुराग मोहन, बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढिंगिया, कुणाल ढिंगिया, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर सोहम चक्रवर्ती को, प्रीतम का संगीत, रॉनी का लिखा फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आक्रोश से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने, संगीत और गायक थे जावेद अली। पसंद करता थे आप सभी, आप हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घुटके। नगर निगम वार्ड नंबर 28, नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम, रूबीना आरिस, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कोआत बिहार से जफ़र हसन, नरगिस जफ़र। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। सनावत से मूसम हुसैन, अशोक वर्मा, राजकुमार वोडाना। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अकलमा खत्री, अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगावा से इसहाक लोलामानी, उमर कासमी, शादाब खत्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश है आप सभी की। आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा। गंज डुंडवारा से कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान, उस्मान, यासिन और कमल राही। ग्राम संदलपुर आतरी से चांदनी यादव, दीपक यादव, कालीचरण यादव। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान अनु, उस्मान कलीम। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, शालिनी, टिवानसी, वाणी, आरबी खेड़ा। और सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्बी और हिमाक्ष। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर जुग जुग जियो फिल्म से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया है कनिष्क सेठ ने, गायक है कनिष्क सेठ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट से होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,68,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अधिनियम के लागू होने से अब वर्ष भर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। विश्व योग दिवस के लिए मध्य प्रदेश आयुष विभाग एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे हर घर योग अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10 से 15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। आंधी बारिश का दौर थमते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज गर्मी और लू का असर बना रहेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।
2: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमारे हाथों में एक नया दिन रख देती है, लेकिन उसे शिकायतों से भरना है या शुक्रिया की रोशनी से सजाना है, ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारा अपना होता है। कभी हम उन चीजों के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, और कभी एक छोटी सी खुशी भी मन को इतने संतोष से भर देती है कि जीवन सुंदर लगने लगता है। सच तो ये है कि सुख केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस दृष्टि में छिपा होता है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। शिकायतें धीरे धीरे मन की मिठास छीन लेती हैं, रिश्तों में अनकही दूरियां भर देती हैं, और फिर घर परिवार दोस्त सबका साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी जीवन को जब हम शुक्रिया कहकर स्वीकारते हैं, जब हम आभार के भाव से भरते हैं, तो साधारण दिन भी उत्सव जैसा लगने लगता है। सच तो ये है कि जिसे जो मिला उसने उसी से अपना संसार बना लिया। किसी ने कमी गिनी और किसी ने कृपा। तो आइए आज इसी विषय पर कुछ दिल की बातें करते हैं। आज का विषय, शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं? आप अपनी जिंदगी में किन बातों के लिए ईश्वर, समय, अपनों या जीवन को शुक्रिया कहना चाहेंगे? क्या है आपके संतोष का आधार? कौन सी छोटी सी बात, कौन सा रिश्ता, कौन सी याद या कौन सा अनुभव आपको भीतर से संतोष से भर देता है? और क्या आपको लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है? तो आज इस कार्यक्रम में अपने अनुभव, अपने एहसास और अपने मन की बात साझा कीजिए हमसे। नमस्कार, बात आपकी, गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, ग्राम सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
2: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
3: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
2: और बिल्कुल समय का ध्यान रखकर आपने फोन किया है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: ये बहुत जरूरी है, हमारे सभी श्रोताओं को ये चाहिए कि वो समय का ध्यान रखकर एक हफ्ते के बाद फोन करें। तो योगेश जी,
3: शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे।
2: बहुत अच्छी बात। तो योगेश जी, हम आज का विषय बता दें। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आप किसके साथ हैं, शिकायतों के साथ या शुक्रिया के साथ। अक्सर मन में लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है। अपने अभावों को, अपनी कमियों को हम बहुत देखते हैं, लेकिन हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए इंसान शुक्रिया कह सके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं और किस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे आप।
3: हमारा जीवन ज़्यादातर शुक्रिया पर ही मतलब अभी तक गुजरा है। अक्सर लोगों को हम शिकायत करते सुनते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलेगी और उस तरह से हमारा मानसिक स्थिति होगा। तो जो चीजें नकारात्मक होती है या जो हमारे से थोड़ी दूर होती है उनके बारे में उतना ना सोचे।
2: बिल्कुल,
3: जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया में गुजारे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया कहने का मतलब तभी आता है कि जब हम या तो सामने वाले का मदद कर दे या सामने वाला हमारा मदद कर दे, तो ये सबसे अच्छी चीजें होती हैं।
2: बिल्कुल, जो कुछ हमें जिंदगी में नहीं मिला है उसकी शिकायत करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो मिला है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, है ना।
3: बिल्कुल, मानव जीवन जैसे हमें मिला है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता है, पूरा परिवार है, इससे बड़ा एक इंसान के लिए कोई सौभाग्य की मतलब बात नहीं हो सकती।
2: बिल्कुल, तो आज हम जानना चाहते हैं योगेश जी कि एक कोई ऐसी बात आप बताएं जिसके लिए आप, या जितनी बातें आप कहना चाहें, किस बात के लिए आप दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिंदगी को।
3: जिंदगी को दिल से शुक्रिया तो इसी बात के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा पूरा भरा परिवार है और अभी तक के 35 साल के जीवन में हमें कभी मतलब दुखद या फिर कह सकते हैं जिंदगी से उस तरह से कोई शिकायत नहीं है।
2: क्या बात है। देखिए, आज जबकि बहुत से इंसान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हर पल शिकायत होती है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा वातावरण भी खराब होता है, ज़िंदगी भी खराब होती है, कई बार शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां आ घेरती हैं इस नकारात्मक भाव में रहते रहते। लेकिन आप कह रहे हैं
3: जी जिंदगी से जितना चाहे है उनसे दोगुना ही मिला है।
2: क्या बात है। तो सोचना चाहिए कि जो कुछ मिला है उसको भी हम सेलिब्रेट करें, है ना। जो कुछ मिला है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला है और का हम प्रयास कर सकते हैं खुशी के साथ, मेहनत के साथ, लेकिन जो मिला है उसे सेलिब्रेट करना ना भूलें।
3: जी।
2: तो योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम नमस्कार।
1: जी। नमस्कार दीदी, मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
0: रोशन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस
1: जी
0: कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि शिकायतें या शुक्रिया, आप किसके साथ हैं?
1: जी दीदी, शुक्रिया के साथ रहूंगा मैं।
0: अच्छा, तो किन बातों का शुक्रिया कहेंगे?
1: जी मैं तो भगवान को, मतलब ईश्वर को यही शुक्रिया कहूंगा कि हमें, मतलब इंसान के रूप में जन्म दिया है। मतलब इंसान का जन्म बहुत यूनिक के बात कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मिलता
0: बिल्कुल,
1: है। जी
0: बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना?
1: जी जी जी जी
0: तो पहला धन्यवाद तो इसलिए कि मनुष्य के रूप में आपको ईश्वर ने जन्म
1: जी
0: दिया। और
1: जी
0: किन-किन
1: जी
0: बातों
1: जी
0: का संतोष है जीवन में आपको? अक्सर हम
1: और दीदी मुझे सारी बातों का संतोष है, लेकिन एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि मैं मतलब पढ़ाई नहीं कर पाया।
0: अफसोस है
1: जी
0: आपको कि आप पढ़ाई
1: जी
0: नहीं कर
1: अब
0: सके,
1: जी जी
0: लेकिन
1: अफसोस भी
0: देखिए।
1: है। जब 2 साल का था तब मुझे माइंड वाला दीदी जी बुखार हो गया था, तो डॉक्टरों ने मतलब पढ़ाई के लिए मना किया था कि पढ़ाई न कराना, नहीं आंखों की रोशनी चली जाएगी।
0: अब तो ठीक हैं आप?
1: जी अभी तो दीदी ठीक है, अब मतलब पूरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन
0: हाँ,
1: मतलब पढ़ाई करने में दिक्कत होती तो पढ़ाई नहीं इसलिए करते दीदी।
0: लेकिन आजकल देखिए पढ़ने के भी बहुत तरीके हैं, सीखने के बहुत तरीके हैं, है ना? सुनकर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, है ना? तो आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सुनकर कीजिए, ऐसे बहुत से
1: जी।
0: साधन
1: और
0: हैं।
1: अभी रविवार को हमने मदर्स डे मनाया है, तो मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी माँ को कि हमें मतलब जीवन, इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने।
0: देखिए, यही एक बात कि माँ साथ है, माँ ने इतनी अच्छी परवरिश दी, इस बात का भी शुक्रिया हो सकता है ना? बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: किसी किसी की तो दीदी माँ भी नहीं होती साथ, तो उनको भी बहुत दुख होता है और हमें भी।
0: जी, तो रोशन सिंह जी, कहने का अर्थ यही है कि जीवन जो है वो नजरिए की बात है, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, चीजों में सुख नहीं है। आपका नजरिया ही जो है वो आपको सुखी या दुखी करता है, संतुष्ट या
1: सुखी और
0: असंतुष्ट
1: दुखी में
0: करता है।
1: नजरिए का बहुत अंतर है दीदी जी,
0: जी,
1: पूरा ही मतलब।
0: तो शिकायतों के साथ नहीं, आप जीवन को शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ें, हमारा यही आज आपसे कहना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।
1: जी दीदी नमस्कार, मैं सुनीता दीदी बोल रही हूँ, आप नाम जान सकता हूँ थोड़ा।
0: जी, सुनीता बोल रही हूँ।
1: दीदी नमस्कार, मैं आपको
0: नमस्कार,
1: वतन का राग में सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से
1: नमस्ते
0: रेडियो से जुड़े रहिए और हमें फोन करते रहिए। बहुत
1: जी जी
0: शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का, नाम बताइए।
1: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के सारण सेवा में आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश जी।
0: संतोष कुमार राव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आज ये जानना चाहते हैं जो विषय है वो आपके नाम से जुड़ा हुआ सा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हम बहुत सी बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं और शिकायतों से भर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतोष देती है? आप शिकायतों के साथ हैं जिंदगी में या शुक्रिया के साथ हैं?
1: जी हमें हर बातों का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ ने जन्म दिया है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हवाएं हमें वायु देती है इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल हमें नीर देता है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन को शुक्रिया अदा करते ही अगर जाएंगे तो जीवन में संतुष्टि पाएंगे और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष का कारण होता है। तो विनम्र बनेंगे तो सहजता ही सरलता का भाव आता है, मन में ख्याल आता है और विचारों को भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं।
0: क्या बात है। तो दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बोझ नहीं सुंदर लगने लगता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कितनी बातों का हम शुक्रिया कह सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर हमारे पास है, माँ ने जन्म दिया, परिवार ने हमें पाला पोसा, इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं, हम चलने के काबिल हैं, बोलने के काबिल हैं, हम सुन सकते हैं, बहुत से उपहार हमें ईश्वर ने दिए हैं, है ना। और आपने प्रकृति की भी बात की है, बहुत अच्छा लगा संतोष जी। और इस तरह की जब एक दृष्टि होती है तो हमारा जीवन जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम शिकायतों से नहीं भरते, हम हर बात के लिए आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं और कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं। और जो कृतज्ञ जीवन होता है वो हमेशा आनंदित होता है।
1: जी बिल्कुल मैम। और बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होता है कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। सभी प्रसारण सेवा के जो कार्यक्रम आते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं और आपकी प्रस्तुतियां बहुत खास होती हैं। जितने भी पुराने हमारे अनाउंसर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। आप सभी की योगदान के लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा बहुत बहुत करते हैं मैडम, क्योंकि इतनी अमूल समय निकाल करके आप हमसे बातें करते हैं और इतने कार्यक्रमों को आप प्रसार करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
0: क्या बात है, आप हमारे प्रसारण के लिए हमें शुक्रिया कह रहे हैं। कि ये भी एक बात हो सकती है, एक नया ही दृष्टिकोण आपने दिया। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद
1: जी मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: जी जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी जी, मैं तो आज धन्य हो गया मैम जी कि आप उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि मतलब कि मेरे विचारों की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो तक पहुंचे और श्रोताओं तक पहुंचे।
0: क्या बात है।
1: तो मैम जी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ सबसे पहले। नियमित श्रोता जय नरसिंह एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील रोटेगांव जिला नरसिंहपुर के से कमलेश कहार बोल रहा हूँ जी।
0: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार रेडियो सुनते हैं और बिल्कुल ध्यान से पूरे 7 दिन के बाद फोन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपका हम आभार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: थोड़ी सी मैम बस एक बात और रख लूं, जैसे तो मैं सुन लूंगा मैम जी, वो तो सुनना जरूरी है, जैसे के अनुकूल ही बोलूंगा। यही की श्रोताओं से निवेदन है, आग्रह, हाथ जोड़ का निवेदन है कि कम से कम 8 या 9 दिन के पश्चात ही आप फोन लगाएं।
0: क्या बात है। तो कमलेश जी, आपके संदेश से हमारा मन खुश हो गया है, आपका आभार करते हैं कि हमारी तरफ से आपने ये बात कह दी है, बहुत शुक्रिया। आज का विषय जो है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन में आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ, किन बातों का आभार करना चाहेंगे आप?
1: ये भी अनुकूल बात है मैम जी कि हमें शुक्रिया का अपनी जगह करने चाहिए जो हमारे पास है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एसी नहीं है तो बहुत से लोग एसी के लिए आतुर हैं आज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो है जितना है, कैसे है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: क्या बात है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो बहुत अधिक शिकायत से भरना ये जीवन को खराब कर देता है। तो कमलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसी कौन सी याद है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको ऐसी कौन सी बात है जो संतोष से भरती है?
1: देखिए मैम जी, मुझे अपनों का साथ रोजी है, उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अपनापन जो है मैं रेडियो के माध्यम से अपनापन समझता हूँ, तो रेडियो मेरे साथ है, मैं रेडियो के रोजाना उसके साथ हूँ। और आप जैसे उद्घोषक हमारे बीच हैं, तो ये भी एक शुक्रिया का या धन्यवाद का या आभार की स्थिति बनती है। अपनों का साथ यदि रोजीना आपके साथ है, इससे बड़ा धन्यवाद या इससे बड़ा आभार किसी के लिए हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल। अगर आपके पास जीवन की बहुत सी उपलब्धियां हो लेकिन कोई अपना ना हो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए, तो सारी खुशियां बेमानी हो जाती हैं, है ना?
1: बिल्कुल। ये मन की बात कह दी, मैं यही कहने वाला था कि यदि हम उत्साह, उमंग या खुशी मनाते हैं और ये अपना साथ ना हो तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें पीस पहुँचती है मन में, हृदय जरूर यह बात खलती है कि अपना कोई होना था तब हम उसके साथ अपनी बात रख पाते या खुशियाँ मना पाते।
0: जी।
1: मैं समझता हूँ कि जीवन हमारा है या रिश्तेदार है या जो भी अपनेपन है, सभी के साथ उत्साह उमंग के साथ रहें और आभार रोज ही ना उनका करते रहें।
0: जी, और कहा जाता है कि जो हर बात के लिए आभार करता जाता है, जीवन में जो कुछ उसको प्राप्त है उसके लिए जो आभार करता जाता है, उसको प्रकृति की ओर से और बहुत कुछ मिलता जाता है। आप जितना संतुष्ट होते जाते हैं उतनी प्राप्ति और होती जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत संतुष्ट होना चाहिए।
1: जी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ रोजीना, मेरा स्वभाव बन चुका है कि धरती माँ को चरण स्पर्श करना, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता की जय हो, आभार करता हूँ उनका रोजीना ऐसा नाम लेकर के, चंद्र देवता, सूर्य भगवान, जो हमारी संस्कृति कहती है, उन सभी का आभार करता हूँ कि मुझे आज के लिए आपने तैयार किया, मैं अब रोजी रोटी से लग जाऊँ।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने कमलेश जी, कि आप प्रकृति का आभार करते हैं, सूरज चांद धरती आसमान का आभार करते हैं कि एक और नया दिन हमें मिला है जीने के लिए और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ें, इस बात का शुक्रिया करते हैं। क्या बात है, मन खुश हो गया ये बात सुनकर।
1: बहन जी, ये शब्दों तक सीमित नहीं है, मैं सुबह में ही लाया हूँ। जी जी, शायद सुना पड़ी हो, कोयल मेरे बीच में है।
0: जी जी जी, कोयल ने आपके स्वर से स्वर मिलाया है और उसने सहमति दी है कि कमलेश जी सही कह रहे हैं।
1: पेड़ लगे हैं आम के, मैम जी अमियां लगी हैं, आम भी हो गए हैं, आंधी तूफान सबका आनंद ले रहे हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए कमलेश जी, इसी तरह संतोष के साथ जीवन को खुशी खुशी आप बिताइए और आकाशवाणी का साथ बनाकर रखिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अंततः यह कहूंगा कि पूरी टीम को आभार धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहते हैं, मैं हर बार यही कह देता हूँ क्योंकि उनको आभार करना हमारा दायित्व बनता है, सभी श्रोताओं का दायित्व बनता है जो हमें आवाज के माध्यम सुनाई नहीं पड़ते, लेकिन उनके माध्यम से आवाज जरूर हमारे तक आ रही
0: है। जी जी जी बिल्कुल। तो हमारी पूरी टीम तक आपका आभार पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं। नमस्कार
1: जी, धन्यवाद जी।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, मैं दशरथ सिंह बोल रहा हूँ, बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर से।
0: दशरथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने हमें फोन किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के विषय पर आप बहुत अच्छा एक कोई विचार रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिंदगी में किन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं? आप शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जीवन का सुख वास्तव में हमारे नजरिए में छिपा होता है या वस्तुओं में, चीजों में छिपा होता है?
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुख का, और शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है। हमारे पास अपना जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी हाथ पैर पांव सब ठीक है, और मम्मी पापा हमारे साथ हैं। शाम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर की चाय हम सब साथ में बैठकर पीते हैं, इससे सुख और क्या हो सकता है।
0: क्या बात है, परिवार का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है, भोजन की व्यवस्था है।
1: गरीबी और अमीरी, ये दुनिया का और संसार का नियम भी है, परिवर्तन का नियम है। लेकिन अपने पास स्वास्थ्य है, अपना जो शरीर है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ है, सलामत है, और मम्मी पापा साथ में है, बच्चे बच्चियां हैं, मिसेज हैं, परिवार है, दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, सभी कस्टमर आते हैं, वो सब सब कुछ चल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है दशरथ जी, के परिवार का साथ है, भोजन की व्यवस्था है, माता पिता का आशीर्वाद है, और आपका जो रोजगार है, रोजी रोटी, उसका काम बढ़िया चलता है, तो ये जरूर है कि आप और अच्छे का प्रयास करते होंगे, लेकिन जो है उसका संतोष जरूर है। जी
1: जी जी, हमने ये बात भी देखी है कि वो सारे के पास अथा पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल शांति नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है। कोई गरीब आदमी आएगा तो उनको ऐसे ही टाल देते हैं कि इससे क्या बात करेंगे, अपना समय ऐसे ही जाया करा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं, हम व्यवहार के पीछे भागते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए संतोष का बहुत सा अवसर और बहुत सी चीजें जीवन में उपलब्ध हैं, देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, है ना? हमारे जीवन में ईश्वर ने हमको ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसी अनेक परिस्थितियां जिसके लिए हम आभार कर सकते हैं, जिसका कि आपने जिक्र भी किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा दशरथ जी कि आपने एक बहुत सुंदर संदेश दिया इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण निरंतर ऐसे ही दिन रात हम तक पहुँचता रहे, जैसे कि आकाशवाणी को सुनते हुए एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है।
0: जी,
1: तो ये मेरे हिसाब से कि जो कस्टमर और सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, जो श्रोता बंधु हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 90 साल का जो हमारा आकाशवाणी का सफर रहा है, हमारे से पहले भी चलता आ रहा था, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझना चाहिए कि आकाशवाणी क्या हो रही
0: है। बिल्कुल,
1: आकाशवाणी क्या होती है।
0: बहुत अच्छी बात, तो आकाशवाणी से ये प्रेम बनाकर रखिए, आपके जरिए ये भी संदेश पहुंच रहा है कि आकाशवाणी, आप जो आने वाली पीढ़ी है वो भी रेडियो से जुड़े। बहुत अच्छा लगा दशरथ जी।
1: और कहते हैं कि जहां ना पहुंचे प्राणी वहां पहुंच गई आकाशवाणी।
0: बहुत अच्छी बात, तो दशरथ जी आपने हमें आज फोन किया, आपका हम आभार करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते खमागणी।
0: नमस्ते खमागणी, कौन बोल रहा है?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहनलाल प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे
1: धन्यवाद।
0: हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैडम। और हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम बहुत खतरनाक है।
0: गर्मी खतरनाक है ही इस साल, तो बहुत बचकर रहना होगा और पूरी सावधानियां बरत कर ही गर्मी के मौसम में बाहर निकलिएगा। फिलहाल जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको संतोष होता है। बहुत से लोग जीवन में शिकायतों के साथ रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, मेरे जीवन में ये कमी है। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जो है आपकी ज़िंदगी में, किस बात के लिए आप शुक्रिया कहना चाहेंगे ज़िंदगी को?
1: हाँ, भगवान की मेहरबानी से एक लड़का है, तो वो मेरी मतलब मुराद पूरी हो गई। और दो बच्चियां हैं, जो एक शादीशुदा है और एक छोटी है, तो मेरी मुराद पूरी हो गई है। और वो एक भगवान की मेहरबानी से एक बच्चा है, तो वो भी अपने काम पर व्यस्त है। तो मतलब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई और मैं संतुष्ट हूँ
0: संतुष्ट हैं। इसके
1: जी।
0: अलावा और कौन कौन सी बातें हैं आपको ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो योग्य हैं और स्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए आप संतोष करते हैं और आभार करना चाहते हैं ईश्वर का? और कौन सी बात है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? कई बार शिकायतें होती हैं लोगों को बहुत कि ज़िंदगी में ये नहीं है, अभावों पर बहुत हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो
1: हाँ
0: हमारे
1: जी,
0: पास
1: मैं मेरे शरीर से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं नशा करता नहीं हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। भगवान की मेहरबानी से खुद धंधा कर लेता हूँ और संतुष्ट हूँ। भगवान की मेहरबानी से धंधा भी अच्छा है।
0: जी, तो आप स्वस्थ हैं इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये बड़ी
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा गया है स्वास्थ्य को, है ना?
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: सबसे
1: स्वास्थ्य
0: बड़ा
1: वो
0: धन
1: धन
0: जब
1: कहा
0: आपके
1: जाता
0: पास है, आप स्वस्थ हैं, तो जीवन का सारा आनंद आपके पास है।
1: है। हाँ
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह
1: जी,
0: से भी सोचा जा सकता है ज़िंदगी को, है ना? तो मोहनलाल जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं अनूपपुर से।
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप, शिकायतों के साथ हैं या शुक्रिया के साथ? ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, खुशी है और आप शुक्रिया कहना चाहते हैं?
1: देखो मैम, शुक्रिया जरूर हमें किसी की, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें अच्छा कोई कर रहा है, तो हम जरूर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी,
0: जिंदगी आपके साथ जो व्यवहार कर रही है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बात जिंदगी से आपको मिली है जिसका आप शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मेरे हमारे जीवन में जरूर ऐसे कई बस ऐसे बातें आए हैं जिसको हम लोगों को शुक्रिया अदा किए हैं, ऐसे बात नहीं है। जी,
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
0: अच्छा, तो देखिए आपके पास एक नौकरी है, इस बात का शुक्रिया कर सकते हैं आप, है ना?
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है,
1: जी जी
0: है ना? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। घर में, घर परिवार में कौन है आपके?
1: घर पर में मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है।
0: और सभी लोग
1: जी
0: स्वस्थ हैं,
1: जी बिल्कुल स्वस्थ
0: सभी
1: है
0: लोग
1: सब।
0: खुश हैं, इस बात का
1: जी
0: शुक्रिया हो सकता है ना?
1: बिल्कुल हो सकता है। और एक शुक्रिया का है, एक और होता है शुक्रिया, जैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करके मेरे को मतलब नौकरी पे रखा, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया अपने बॉस को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: दोस्त को भी शुक्रिया, ईश्वर को भी शुक्रिया। तो इस तरह से एक नज़रिया जब हमारा होता है ज़िंदगी में कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसको भी हम कभी सेलिब्रेट करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छे के लिए हम प्रयास ज़रूर करें, जो कुछ कम है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। किसकी ज़िंदगी में कमियाँ नहीं हैं? हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी बात की कमी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो सकता है कि परिवार की कमी हो, है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास एक अच्छी सी नौकरी है, घर परिवार है और सभी स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सकारात्मक भाव के साथ देखिए और बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है ये, हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
1: मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह शाक्य है, मैं टैक्सेशन असिस्टेंट हूँ मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत SGST डिपार्टमेंट में।
0: चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं मैम,
0: पहली बार फोन किया है। तो इस तरह से आप हमारे नए श्रोता हुए, तो विशेष स्वागत आपका। और अब हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: मैडम, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं वो ऐसा मानिए कि अगर वो नहीं होंगे तो हमें छोटी छोटी खुशियों का कभी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल,
1: थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होना या नेगेटिव फेस आना बहुत जरूरी होता है, उससे आदमी बूस्ट भी करता है
0: जी,
1: परिवार के साथ में उसकी बॉन्डिंग भी बनती है, बहुत सारी चीजें अच्छी है।
0: जी जी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसका आपको बहुत संतोष है, जिसके लिए आप जिंदगी को शुक्रिया कहना चाहेंगे?
1: मैडम, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपने परिवार के प्रति काफी संतोषजनक हूँ, उनकी बहुत केयर करता हूँ, वो मेरी बहुत केयर करते हैं।
0: एक अच्छा परिवार है आपके पास, है ना?
1: जी मैम।
0: जी जी, तो देखिए, जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दृष्टिकोण की बात होती है। जो संतोष और सुख है वो वास्तव में हमारे नजरिए की बात है। तो चंद्रशेखर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे नए श्रोता हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे नियमित श्रोता रहें, लगातार हमें फोन कीजिएगा, बस इस बात का ख्याल करके कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद ही आप दोबारा फोन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: शिवम सिंह,
0: कहाँ से बोल रहे हैं शिवम जी?
1: शहडोल, मध्य प्रदेश।
0: शिवम जी, आप हमारे नए श्रोता हैं शायद,
1: जी
0: पहली बार फोन लगा है आपका।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम शिवम जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या कहेंगे आज के विषय पर आप?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है,
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, रहते हैं मेरी पूरी फैमिली एंड डायरिंग माई एल्डर ब्रदर्स, माई पेरेंट्स, सारी चीज़ें सब लोग। एंड जो क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी जगह आपको ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वहाँ पे बहुत अच्छी मेरे जो बड़े भाई लोग हैं और जो मेरे और पेरेंट्स हैं, वो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे।
0: क्या बात है
1: सेकेंडली,
0: जी।
1: आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई जॉब, और जॉब ऑन हैविंग, और अभी जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर्स मुझे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे आगे बढ़ने में लाइफ कोचेस भी, एज अ लाइफ कोच भी गाइड करते हैं, एज अ कंपनी कोच भी गाइड करते हैं।
0: क्या बात है। तो शिवम जी, आप बहुत खुश हैं कि एक बहुत अच्छा परिवार आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करता है और सपोर्ट करता है जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, और ऐसा ही आपका कार्यक्षेत्र भी है। तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सुख जो है वो वास्तव में वस्तुओं से होता है, चीज़ों से होता है, या हमारे नज़रिए की बात है सुख?
1: नजरिए का होता है, क्योंकि सबकी लाइफ, सबके देखने का तरीका अलग होता है। किसी को मटेरियल हैप्पीनेस होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक होती है, किसी को चीजों में खुशी मिलती है, किसी को फैमिली में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। मुझे फैमिली में ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आपके पास चीजें नहीं भी हैं, बट आपके पास एक अच्छा परिवार है, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको आपके जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ दें, तो जिंदगी आसान लगती है।
0: बिल्कुल। और नजरिए की बात मैंने इसलिए की कि एक गिलास की हम बात करें कि एक गिलास अगर आधा भरा है तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। कोई कह सकता है कि ये गिलास आधा भरा है, और कोई ये भी कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो ये दृष्टिकोण की बात है ना। तो हर जीवन में कमी तो होती है, अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर शिकायतों से भरते हैं तो फिर बात बनती नहीं, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता उसकी ख़राब हो जाती है ना।
1: जी
0: तो शिवम जी, आपने आज हमसे बात की, हमें फ़ोन किया और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जीवन शायद कभी पूरी तरह शिकायतों से खाली नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुक्रिया के कुछ दीप जलते रहें, तो अंधेरे उतने घने नहीं लगते हैं। कभी किसी अपने का साथ, कभी किसी अनजान की मुस्कान, कभी सुबह की धूप, तो कभी कठिन समय में मिली छोटी सी उम्मीद। जीवन हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा देता है जिसके लिए ठहर कर धन्यवाद कहा जा सके, आभार किया जा सके, शुक्रिया कहा जा सके। शिकायतें मन को थका देती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है और यकीनन संतोष का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसी सोच और इसी सकारात्मक भावना के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। आप मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ महसूस करते रहिए और जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कहते रहिए शुक्रिया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपये की राशि अंतरित होगी। प्रदेश में 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे वर्ष भर में 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे न सिर्फ ग्रामीण आजीविका बल्कि अधोसंरचनात्मक विकास को भी गति मिलेगी। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहराई से पड़ता है। और भागदौड़ वाली इस जिंदगी में संगीत एक थेरेपी की तरह है, और ये थेरेपी अगर आपके पसंद की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीतमय थेरेपी, वो भी आपकी पसंद की, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के इस पहले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से। लता मंगेशकर की आवाज को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। इंदौर मध्य प्रदेश से विजय, अनिल, नेहा फड़से, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा और सुनील। साथ ही औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेमिसाल का ये गीत।

जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल और अर्जुन। आप सभी की पसंद है फिल्म अभिलाषा का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गायक कलाकार हैं अमित कुमार। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान के इस गीत को सुनने की, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 12वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे। इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी। सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी, अपने लाडले को समझाएं। उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे

0: खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए?
1: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
2: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
3: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
0: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
4: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सबके हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए दो शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
5: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
1: वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
6: इनकी शादी हो गई है क्या?
1: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
6: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
5: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
7: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
5: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
7: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।
5: अच्छा।
7: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना, हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
5: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ, मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
7: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
5: अरे अरे अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
7: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो, कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
5: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में

0: तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ, याद आया, वहां आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
1: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने 4 पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब, मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी। मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
0: ये तो समझती हैं कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बलाह की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूँ, आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा। सब बेकार का खर्चा है, पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय, तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। ड्रामे के लिए देर हो रही है। हाँ। अरे, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब, तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ। साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।
2: वाह वाह, क्या अभिनेत्री है, शकुंतला के रोल में जान ही डाल दी।
3: इन्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए।
4: बड़े खुश नसीब हैं, ऐसा नगीना उनकी अंगूठी में जो जड़ा है।
3: लेकिन साहब, इतना महंगा नगीना और ऐसे कंजूस की अंगूठी में, वो क्या जाने इसकी कीमत।
5: साहब, गोशाल कंपनी से कोई महाशय आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
0: ठीक है, अंदर भेजो।
2: साहब, ये 200 रुपए का बिल है।
0: बिल? कैसा बिल?
2: कल मेम साहब ने हमारी दुकान से कुछ खरीदारी की थी, उसी का बिल है।
0: ओह, हाँ। अच्छा, तो कल की चमक दमक, ये बिल उसका खमियाजा है।
6: मन मार कर अक्षय बाबू को सुंदर बीवी के इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ उठाना ही पड़ता था। बीवी की खातिरदारी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा अपने ऊपर भी करना पड़ता था। हालांकि ये सब उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। आए दिन किसी न किसी अनजाने खर्च का बोझ उनके सिर पर सवार रहता था। एक रोज वकील साहब जब कचहरी से लौटे,
1: सुनिए जी, श्रीमती किचलू आई थी और ये निमंत्रण पत्र दे गई हैं।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ तो।
1: हाँ, ये लीजिए।
0: अच्छा है, निमंत्रण पत्र तो बड़ा महंगा छपाया है। अच्छा, अपने छोटे भाई के बीए में पास होने के शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार प्रीति भोज में आमंत्रित करता हूँ। लीजिए बताइए, ये भला बीए पास करने की खुशी में इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई अगर बीए में पास होता तो मैं तो उसकी पीठ ठोक कर कहता कि शाबाश, खूब मेहनत की। हजारों लोग हर साल बीए पास करते हैं, अजय इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा चलो, मान भी लिया जाए, लेकिन लेकिन ये ड्रामा खेलने का भी कार्यक्रम, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है।
1: क्यों, इससे बेहतर खुशी का और क्या मौका हो सकता है?
0: मेरी जान, डॉक्टर साहब समझदार आदमी है, ये उन्हें क्या सूझी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खुशी तो हृदय का तत्व है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है।
1: ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना।
0: जाना पड़ेगा क्यों? क्या वादा कर लिया है?
1: अब देखिए ना, श्रीमती किचलू कितना आग्रह करके गई हैं।
0: तो मेरी जान, तुम एक काम करो, जैसे वो तुम्हारे घर आई, ऐसे ही तुम भी कभी उनके घर

0: ये हुआ कि ये ड्रामा खेलेंगी और घोषाल एंड कंपनी फिर से मुझे कम से कम 200 रुपए की चपत लगाएगी। मामला बेहद गंभीर है। वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बात की सख्त जरूरत है कि अभी से रोकथाम कर दी जाए।
1: ये बला फिर से तुमने अपने सर ले ली। अपनी तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे इस प्रेमी को कितनी परेशान करती है।
0: मेरी जान, इस किस्म के जलसे नैतिक दृष्टि से बहुत आपत्तिजनक होते हैं। इन्हीं मौकों पर दिलों में ईर्ष्या के बीज बोए जाते हैं और यहीं पीठ पीछे बुराई करने की आदत पड़ती है। अरे ऐसे ही जलसों में तानेबाजी और नोकझोंक की नौबत आ जाती है कि फला लेडी हसीन है इसलिए उसकी दूसरी बहनों का फर्ज है कि उससे जलें। मेरी जान, ईश्वर ना करे कि कोई किसी से जले। मुझे तो डर है कि तुम्हारा दाहक सौंदर्य कितने ही दिलों को जलाकर राख कर देगा। इसलिए प्यारी हेमू, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इसे पसंद नहीं करूंगा तो तुम हरगिज इसे स्वीकार नहीं करती।
2: साहब की दलीलें तो सुनिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे भी कम ना आका जाए। देखिए जी, मैंने तो यही सोचकर मंजूर कर लिया था कि कपड़े तो सब पुराने ही काम आ जाएंगे और ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होगी। बस कुछ घंटों की तकलीफ जरूर है और एहसान मुफ्त में हो जाएगा। अरे डॉक्टरों को नाराज करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना? मगर अब नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मजबूरी उन्हें अभी लिखी देती हूँ। सचमुच क्या फायदा बेकार की उलझनों से।
0: कपड़े सब पहले के ही काम आ जाएंगे और कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। चलो, दिल से एक बड़ा बोझ तो उतरा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मामला ऐसा है तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करता।
1: अरे नहीं नहीं हेमू, मेरी जान, मेरी ये मंशा हरगिज नहीं है कि तुम जाओ ही मत। अब देखो ना, जब तुमने निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है तो उससे मुकरना अच्छी बात नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जहां तक मुमकिन हो ऐसे जलसों से दूर ही रहना चाहिए।
2: आप फिक्र ना करें, अब नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बातें मैंने गांठ बांध ली हैं।
3: दूसरे दिन शाम को अक्षय बाबू बगीचे में अपनी एक खास जगह पर फूलों के खिलने का आनंद उठा रहे थे। अक्सर काम से फुर्सत मिलते ही वो बगीचे में टहलने आया करते थे। तभी एक बूढ़ा उन्हें एक रंगीन और खुशबूदार लिफाफा थमा गया।
0: लिफाफा? देखें तो किसका खत है, क्या लिखा है? मेरे प्यारे अक्षय बाबू,
2: आप इस नाचीज के खत को पढ़कर बहुत हैरत में आएंगे, मगर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ जरूर कर देंगे। आपके स्वभाव और आपके रहन सहन के तरीके सुन सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया है। आपकी सादगी ने मुझे मोहित कर लिया है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुद्दतों की सोई।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा होगा। मैं कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है।
2: तो मौजूद है जिसकी मेरी निगाह में ज्यादा इज्जत है। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपको अपने रूप की जरा भी चिंता होती तो शायद मैं बहुत प्रसन्न होती, मगर मैं रूप की भूखी नहीं हूं। मुझे तो सीने में सच्चा दिल रखने वाले एक इंसान की चाहत है और मैंने उसे आप पे देखा है। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप कल रात को डॉक्टर किचलू के बंगले पर तशरीफ ले आए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। वहां अशोक के पेड़ के नीचे हरे कपड़े पहने मैं आपके लिए आंखें बिछाए बैठी नजर आऊंगी।
0: तो जरूर इस परी ने मुझे यहां बैठे देखा हो।

0: मैंने कई दिनों से आईना भी तो नहीं देखा है, ना जाने चेहरा कैसा दिख रहा होगा। क्या करूं? हाँ, क्यों ना हौस के पानी में अपनी सूरत देखी जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहां तो चेहरा साफ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर तो घर ही चलना पड़ेगा, वहां आईना देखता हूं। ये क्या, हजामत साफ नहीं है और ये कमबख्त साफा भी तो ठीक तरह से नहीं बंधा है। मगर इतना तो है कि मुझे कोई बदसूरत तो नहीं कह सकता। जरूर ये कोई ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी महिला है, वरना मामूली औरतों की निगाह में तो दौलत और रूप के सिवा कुछ और होता ही नहीं। लेकिन मेरा फूहड़पन शायद ही किसी स्त्री को पसंद आए, मुझे अब इसका ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। आज मेरे भाग्य जाके बड़ी मुद्दत के बाद मेरी कद्र करने वाला कोई सच्चा जौहरी नजर आता है। भारतीय स्त्रियां तो शर्म हया की पुतली होती हैं, जब तक अपने दिल की हलचलों से मजबूर ना हो जाएं, वो ऐसा खत लिखने का साहस ही नहीं कर सकती। इन्हीं ख्यालों में बाबू अक्षय कुमार ने रात काटी, पलक तक नहीं झपकी। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक बाबू अक्षय कुमार ने शहर की सारी फैशनेबल दुकानों की सैर की। दुकानदार हैरान थे कि साहब यहां का रास्ता कैसे भूल गए। गरज ये कि आज उन्होंने बड़ी बेदर्दी से रुपया खर्च किया और जब घर चले तो फिटन पर बैठने की भी जगह नहीं थी।
1: अरे, आज सवेरे से कहां गायब रहे और ये माथे पर पसीना कैसा?
0: अब हाँ, जिगर में कुछ दर्द था, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ चला गया था।
1: तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जिगर का दर्द एक भयानक रोग है।
0: अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है।
1: इसकी दवा डॉक्टर किचलू के यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, मालूम नहीं डॉक्टर चड्ढा बीमारी की तह तक पहुंचे भी हैं या नहीं।
2: अक्षय कुमार ने हेमवती को चुपती निगाहों से देखा, खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। शाम को जब वो पार्क, घंटाघर और आनंद बाग की सैर करते हुए फिटन पर जा रहे थे तो उनके होठों पर लाली और गालों पर जवानी की गुलाबी झलक मौजूद थी। आज उन्हें पहली बार जीवन में अपने रूपवान ना होने पर दुख हो रहा था। आज वो अपनी पतली नाक के बदले अपना खूबसूरत गाउन और वकालत की डिग्री सब कुछ देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर किचलू शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे, पार्टियां देना तो उनका जैसे शौक था। बंगला क्या था, शानो शौकत का जीता जागता नमूना था। दूर तक फैले अशोक के पेड़, सजे धजे फाटक, बरामदे की लंबी मेहराबें, सरू के पेड़ों की कतारें, बल्ब की रोशनी से चकाचौंध बंगला भव्यता का संकेत दे रहा था। मुख्य कक्ष में ओपन थिएटर और उससे सटा बार, अभिप्राय ये कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सजा धजा बंगला था।
3: अरे वकील अक्षय कुमार, आज ये कूलर में फूल कैसे लग गए?
4: आइए आइए भाई, आज तो आप एकदम बाके नौजवान लग रहे हैं, क्या बात है
5: भाई। आज वकील साहब को क्या हो गया है, ये चमक दमक माजरा क्या है?
6: जी जनाब, माजरा कैसा, अपने अक्षय बाबू किसी से कम थोड़ी ही ना है। रुपया है, मान सम्मान है, इज्जत है और खूबसूरत बीवी है, क्या नहीं है इनके पास।
5: माफ करना, बात काट रहा हूँ, भाभी जी की संगत का असर रंग लाया है। बीवी अगर हसीन हो, जवान हो, ऊपर से अदाकारा हो तो उसका जोड़ बिठाना कोई मामूली बात है क्या? क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्यों अक्षय बाबू?
2: कैसे कैसे मस्खरे महफिल में जमाए, इनसे फुर्सत मिले तो उन मोहतरमा को ढूंढा जाए। वहां देखूं उस अशोक के पेड़ के नीचे, मगर वो है कहां। हाँ, आधा घंटा हो गया, चलो अब नाटक भी शुरू होने वाला है, वहीं बैठा जाए।
4: क्या काती लताएं हैं।
5: हाय, शकुंतला के बेश में तो ये अप्सरा हैं।
4: अजी साहब, फलक के चांद और धरती के चांद में कौन ज्यादा हसीन है, कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या अक्षय बाबू।
2: ये क्या, ये तो हिम्मती है। इसने तो मुझसे कहा था कि नाटक में नहीं जाएगी। इन्होंने तो मेरी नसीहतों और अपने वादों और यहां तक कि मेरी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखा। हे भगवान, यहां मेरा दम घुट रहा है। बाहर चलता हूं, उन मोहतरमा को तलाशता हूं। रात के 12 बजने को आए, उनका कहीं पता नहीं। मैं भी कैसा अहमक हूं, एक औरत के चकमे में आ गया। ना जाने हेमवती भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरे वो पेड़ के नीचे, वो सुंदरी, अरे हाँ, वो तो मुझे ही इशारे से बुला रही है। चलता हूँ वहाँ। ऐ रूपवती, तुम्हारी इस कृपा के लिए दिल से मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें देखने के शौक में मेरी आंखें पथरा गई हैं। अगर तुम्हें कुछ देर तक और नहीं मिल पाता तो शायद मेरी जान ही निकल जाती। कल शाम से ही मेरे दिल की जो हालत है उसका जिक्र करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने हुस्न के जलवे दिखाइए। ये पर्दा हटा दीजिए, चेहरे से घूंघट हटा दीजिए। ये क्या, अरे हेमवती, तुम ओ तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। बस हेमवती, बस अब मुंह से कुछ मत कहो, मैं खुद से बेहद शर्मिंदा हूं। हाँ हेमू, तुम जीत गई और मैं हार गया, और ये हार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 12वीं कड़ी, नसीहतों का दफ्तर। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, सतीश कक्कड़ और अशोक शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई नव निर्वाचित सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल्द ही अन्य केंद्रीय योजनाओं को निर्बाध रूप से सुलभ कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान 1,25,22,542 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपए की राशि अंतरित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक प्रदेश में आज से विशेष अभियान हर घर योग चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में फ्रांस के राजदूत, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों और प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, गर्मियों की तेज धूप और उमस भरा मौसम न केवल असहज लगता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं, जिनमें से कई को समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल सावधानियों और जागरूकता के साथ आप इस खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो सबसे पहले सखियों, ये जानने की जरूरत है कि हीट स्ट्रोक और हीट थकावट में अंतर क्या है। शरीर जब अत्यधिक गर्मी से थक जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है, तब यह स्थिति होती है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकती है। अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का ठंडा और नम हो जाना, कमजोरी और थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द होना, धड़कन तेज या धीमी हो जाना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है सखियों? त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना, भ्रम और बेहोशी या दौरे वाली स्थिति हो जाना, धड़कनों का तेज हो जाना। तो आप समझ ही गई होंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। और अब जानते हैं इसके इलाज और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। व्यक्ति को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर को ठंडे पानी से स्पंज करें, ढीले कपड़े पहनाएं, पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें। वहीं अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करें, बर्फ के पैक, ठंडी तौलिया वगैरह इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना निकले, हल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहने, दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी, शिकंजी हमेशा लेते रहें, बाहर निकलते समय छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है सखियों। हीट स्ट्रोक और हीट थकावट को रोकना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्यवाही की। तो सखियों, बहुत सी जानकारी और भी देंगे आपको आगे कार्यक्रम में। पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो क्यों आज 12 मई है। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसका उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, फसलों की कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि कीटों के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2018 में इस दिन की घोषणा की, जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की एक विरासत है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कृषि व्यापार को सुरक्षित बनाने में पौधों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे हमारे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितने आवश्यक हैं।

बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी, जो 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक सरकारी कार्यक्रम है। यह योजना 40% तक के भारी सब्सिडी के साथ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल कम करना है। आवेदन करने के लिए आप pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर।

0: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इन्हीं इरादों और वादों के साथ शुरुआत करते हैं आज के मेरी उड़ान क्रम का। आज हमारे साथ हैं सपना यादव का, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आजकल हम हर जो मूवमेंट होता है, क्षण होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई भी अवसर, और कुछ भी सेलिब्रेशन में हमें जरूरत पड़ती है केक की। तो हम महिलाओं के लिए इस केक के बिजनेस में कितना सुनहरा अवसर है। सपना जी, सबसे पहले ये बताइए, केक का बिजनेस शुरू करना है, ये आइडिया आपको कैसे आया?
1: केक का बिजनेस करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली कोविड के समय सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे कुछ अवेलेबल नहीं था। मेरी एनिवर्सरी थी अप्रैल में, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या केक कैसे मिलेगा। बस वहीं से मैंने कुछ घर के सामानों से बनाया केक, फिर उसका स्टेटस रखा। जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मेरा स्टेटस देखा, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नेबर्स थे, तो उनको भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट।
0: कोविड के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशन मिला कि आपने घर के लिए बनाया और फिर आपको बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। तो अभी आपको कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं केक के?
1: अभी मुझे वीकली मिल जाते हैं 5 से 6, या फिर कभी कभी मुझे एक दिन में 3 या 4 भी बनाने पड़ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग भी देना पड़ता है और फिर लेट नाइट भी देना पड़ता है। तो ये चीजें मैं फिर ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं मंथ में 15-20 ऐसे ऑर्डर्स हो जाते।
0: तो सपना जी ये बताइए कि जब आपने पहला केक बनाया उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था?
1: वो तो बहुत खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो मैं देखती थी कभी सोचा नहीं था कि ये केक्स हम बना सकते हैं। बहुत खुशी हुई तब मैंने बनाया और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने तारीफ की। तो वो तो एक स्पेशल ही होता है हस्बैंड की तारीफ मिले।
0: जब अपने किसी हुनर की कोई तारीफ करता है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और सपना जी, सबसे पहले जब आपने सोचा कि आपको केक बनाना है तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी?
1: देखिए, केक बनाने के लिए तो हमारे घर में जो आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, हम केक उससे भी बना सकते। किचन में सोडा भी यूज होता है, बेकिंग पाउडर भी होता है, शुगर भी होती है, ये सब बेसिक चीजों से ही केक बनता है। फिर हम इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, वो एसेंस के होते हैं। तो अगर आप सिंपल केक बनाएंगे तो एसेंस की नीड नहीं है, नहीं तो आप घर के ही बेसिक सामान से ही केक बना सकते हो। आपको कोई मैदे की जरूरत नहीं, कोई सूजी की जरूरत नहीं, आप घर के गेहूं के आटे से भी आप केक बना सकते हैं। इवन शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी डालकर केक बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम गुड़ से भी केक बना सकते हैं। तो कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं। हाँ, हमें एडवांस लेवल पर जाना है तो हमें चीजों की जरूरत है।
0: इतने सारे ऑर्डर्स आपके पास आते हैं तो अभी तो आपको बहुत सारे इसमें लगने वाले सामानों की जरूरत पड़ती होगी, तो खुद मार्केट जाकर लाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं?
1: नहीं, वो मैं खुद सर्च करती हूँ मार्केट में। जैसे जैसे नई चीजें आती है मैं मार्केट खुद जाकर सर्च करती हूँ और फिर जैसे मुझे जिस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे आजकल बच्चों को थीम केक चाहिए, डोरीमैन केक चाहिए, बारबी गर्ल थीम, तो ये सब अलग अलग थीम चल रही है आज।
0: इतना बारीक काम है कि इसमें बहुत सारे टाइम की जरूरत
1: पड़ती
0: है।
1: ये वो केक को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, पर जब उस चीज में आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है उन चीजों को, तो आपके हाथ ऐसे चलते जैसे आप रोटी नहीं बेलते हो फटाफट। जैसे एक लेडी को कितनी आदत हो जाती है रोटी बेलने की, उस तरह से केक आपका बनना। अगर मुझे कोई ऑर्डर देता है 2 घंटे पहले तो मैं केक रेडी करके दे दूँ।
0: 2 घंटे में अगर एक केक बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगा।
1: आराम से
0: जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से संभालते हो और आप केक के लिए आराम से टाइम निकाल लेते हो।
1: ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलूंगी कि मुझे घर में रहकर मैं घर भी संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ और मैं ये काम भी कर पा रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं।
0: एक सवाल और था आपसे, जैसे जो सखियां चाहती हैं, जैसे उनको भी पता है कि वो बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, उनमें भी हुनर है किसी चीज का, या सपोज वो केक ही बनाती हैं, अच्छा बना सकती हैं, इसकी शुरुआत वो कैसे करें?
1: शुरुआत तो सबसे पहले हमें केक का बेस, जो स्पॉन्ज बोलते हैं जिसको, ड्राई केक बोलते हैं, उसमें आप पहले बनाइए, 1-2 बनाइए, चॉकलेट का बनाइए, वनीला बनाइए, ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं।
0: तो इसके लिए प्रॉपर कहीं ट्रेनिंग की ऐसी कोई जरूरत
1: ऐसी
0: नहीं,
1: कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल हूँ जिस मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग भी अगर आप लेते हो और ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो, आगे कुछ नहीं करते, पर आपको ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिस तो लगती है।
0: प्रैक्टिस
1: आपके हाथ में सफाई आने के लिए आपको खुद को कम से कम 10 केक बनेंगे तब आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें सही बना पाए।
0: तो जैसे कोई हमारी सखियां हैं घर पर ही शुरू करना चाहती हैं केक का बिजनेस, तो मिनिमम उनको कितने अमाउंट की जरूरत हो?
1: आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उससे आप स्पॉन्ज बना सकते हैं। फिर आपको क्रीम चाहिए, टर्निंग टेबल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, नाइफ चाहिए, इसके लिए आप 1000 रुपीज इनफ है। 1000 रुपीज 1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
0: और ओवन भी जरूरत पड़ती होगी?
1: देखिए ओवन तो मैं खुद अभी कोविड के 2 साल मैंने बनाया, मेरे पास कोई ओवन नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी एडवांस कोई मशीन नहीं थी। मैंने अपना केक 2 साल तक कम मैं बता दूं हंड्रेड्स ऑफ केक मैंने कढ़ाई और कुकर में ही बनाए।
0: तो बहुत अच्छी बात है सपना जी। और बहुत सी हमारी सखियां होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनमें एक डर होता है, एक हौसले की शायद कमी होती कमी है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: सखियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और किसी भी चीज को देखकर घबरा जाना या डर जाना, कोई केक हम मेरे लिए भी पहले मैं देखती थी कैसे बनता होगा, पर कोई स्पेशली लेडीज के लिए तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, कर सकती हैं वो, बस अपने अंदर के हुनर को पहचाने तो सब कुछ पॉसिबल है।
0: बिल्कुल सही बात कही है कि अपने हुनर को पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आप में कोई प्रतिभा है, और जरूर होगी, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरे उड़ान क्रम में सपना जी आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

कि उस खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है फूड जोन की। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और लू से बचने के लिए सत्तू यानी कि चने का आटा सबसे बेहतरीन और सस्ता घरेलू उपाय है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है सखियों। तो आइए आज आपको बताते हैं क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत के बारे में। यह सबसे आम और झटपट बनने वाली रेसिपी है जो पेट को तुरंत ठंडक देती है। तो इसमें लगने वाली सामग्री को लिख लीजिए सखियों। 2 बड़े चम्मच सत्तू, 1 गिलास ठंडा पानी, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया। और सखियों आप जानते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 गिलास में सत्तू और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें ताकि गांठें ना पड़े। फिर बाकी पानी, नींबू, काला नमक, जीरा मिर्च और धनिया मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। ये क्लासिक नमकीन सत्तू शरबत आपको बहुत ही पसंद आएगा। और सखियों आपको बता दें कि सत्तू का सेवन सुबह खाली पेट या दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सखियों फिर से लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां यह हमें सीखने और जुड़ने के अवसर देता है, वहीं छोटी सी लापरवाही किसी भी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में महिलाएं सुरक्षित डिजिटल अनुभव के लिए कुछ अनिवार्य कदम उठा सकती हैं। इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी ऑनलाइन चली गई तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम या वित्तीय विवरण साझा ना करें। आप इन्हें सीधे अपलोड भले ही नहीं करती, पर कई बार अनजाने में किसी पार्सल या अवार्ड को दिखाते समय ये सूचनाएं गलती से पोस्ट हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।
1: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

सुंदरलाल मालवीय और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। कलाकार हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिखा शर्मा। आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने शिखर शर्मा के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

फिल्म गुमराह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी

0: वाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पदक और 1,00,000 रुपए नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
2: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
1: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच

0: एजेंसी को बसों के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह

0: लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म है तेरे नाल लव हो गया।

शुभ वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते थे संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अकोला से गांधी बाग के रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की यही फरमाइश थी। अमरावती महाराष्ट्र के सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालहिया और उनके सभी साथियों ने इसी गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत। पसंद करने वाले हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणिता गवाणकर की फरमाइश आई है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, सुमित, श्वेता, ध्वनि और टुकटुक गवाणकर ने भी ये फरमाइशी पत्र भेजा है। शाजापुर मध्य प्रदेश से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत भी यही गीत सुनना चाहते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही पसंद है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध गीत। आवाज़ शफकत अमानत अली और क्लिंटन की है। फिल्म है जोड़ी ब्रेकर्स।

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रांझणा से। जावेद अली, कीर्ति सगाथिया और पूजा के गाए इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेजी है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोना शारदा, दामिनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल और मिगलानी परिवार के सभी सदस्यों ने मलॉट कैंप पंजाब से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत।

इरशाद कामिल का लिखा एक और गीत आप सुनेंगे, चिन्मयी श्रीप्रदा और आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनिल कवचाले, नेहा फटसे, सीमा, सबीहा, पूजा, नेहा, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी। इंदौर से ये पत्र आया है। पटेल नगर मलौट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीतारानी जाजौरिया, गगनदीप और बेबी आरजू ने भी अपना फरमाइशी पत्र हमें भेजा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की फरमाइश आई है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कौसर मुनीर का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। फिल्म है गोरी तेरे प्यार में और इस गीत को आवाज दी है नीति मोहन और कमाल खान ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, कमलेश जयपुरिया, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला, लालचंद्र मिश्र और नरेंद्र कुमार राम ने भिलाई और रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की फरमाइश है। प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपना पत्र भेजा है। भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की भी यही पसंद है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें गीत संगीत चर्चा और रोजगार सूचनाएं शामिल होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कृषि के साथ वानिकी के लाभ विषय पर ली गई भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, साथ ही होंगे बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल रहेगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8:00 प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित दिनकर कैंकिनी का ख्याल गायन, राग होगा सावनी बिहार। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने मालवी लोकगीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं शिखा शर्मा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने शिखा शर्मा और साथियों के गाए भक्ति गीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अमित कुमार के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है तेरी।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वर में अब सुनते हैं योगेश का लिखा गीत। संगीत गोविंद नरेश का है और फिल्म है हस्ती खिलती।
1: Hey, hey, hey.

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों के स्वर में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म शक्ति के लिए इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था और फिल्म थी मशाल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है काव्य पाठ। शब्द सागर कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
3: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भू पर अधर्म की अति होती, भू पर अधर्म की अति होती, तब राम अवतरण लेते हैं, भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं, सीताएं तब जन्मा करती, सीताएं तब जन्मा करती, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पाप घड़ों में भरते हैं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती, तब तब रावण आ जाता है, तब तब रावण आ जाता है, सीताएं तभी हरी जाती, सीताएं तभी हरी जाती, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है, पर क्रोच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा, रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा, यामा और हल्दी घाटी, नई कविता की नई छटा, नई कविता की नई छटा। करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो, करुणा की आहें आँखों में, आँखों से अश्रु बरसता हो, जन्मा करती तब ही कविता, जन्मा करती तब ही कविता, जब शिवा समर में लड़ता हो, जब शिवा समर में लड़ता हो, शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं, शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं, कविताएं रास रचाती हैं, कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब, कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है, पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है, गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता, कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता सविता, ढलता चंदा सविता सविता, ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता, कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता, कविता कविता सरिता कविता। कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता में जोश उमड़ता जब, भर जाता बाहु बाहु में बल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल। मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय, जय हिंद बना करती निर्भय, वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती। कविता भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उठो जागो। उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है, उठो जागो बढ़ो आगे, समय हमको बुलाता है, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, पुराणों में समय ने ही बहुत से कर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, कथाओं ने रचे रिश्ते बहुत से धर्म बतलाए, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, उन्हीं कर्मों उन्हीं धर्मों ने कितनी क्रांति कर डाली, भिखारी बन गया राजा जनों ने राज्य श्री पाली, भिखारी बन गए राजा जनों ने राज्य श्री पाली। नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, नृपति हरिचंद से आगे बढ़ी थी राम की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा, महाभारत रचा जिसने वहाँ थी कर्म की महिमा।

0: कथा नायक भले हूँ कृष्ण खलनायक बहुत से थे। कथा नायक भले हूँ कृष्ण खलनायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे। कोई कम तो नहीं था पर धनुषायक बहुत से थे। समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है। समय ही है सभी को कर्म का प्रतिफल दिखाता है। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा। समय ने ही बहुत को भ्रांति में लड़ते हुए देखा। कई युद्धों में जन को क्रांति भी करते हुए देखा। बहा जब पाप का दरिया तभी जागृति यहाँ आई। हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही छाई। हिलोरें ले रही जन में वहाँ थी क्रांति ही थाई। उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली। उठे हुंकारते लोगों ने ऐसी क्रांति कर डाली। गिरे और मर गए फिर भी गिरे और मर गए फिर भी विजय श्री प्राप्त कर डाली। विजय श्री प्राप्त कर डाली। दुर्गावती लक्ष्मी सदिश कुछ वीर बालाएं। समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा। समय ने दृढ़ अजयों को वहां गिरते हुए देखा। परम सामान्य जन को शीर्ष पर चढ़ते हुए देखा। सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला। सिकंदर आदि क्रूरों का भी मन संपूर्णतः बदला। कई के कर्म तो बदले कई का धर्म भी बदला। गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है। गुलामी में कई देशों ने सदियां तक गुजारी है। कई पीढ़ी रही मरती बढ़ी वह पर नहारी है। बढ़ी वह पर नहारी है। चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं। चलें कर्तव्य पथ पर तो बहुत राहें भी मिल जाएं। करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं। करें हम धर्म पालन तो बहुत बाहें भी मिल जाएं। समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना। समूची मेदनी अपनी समूचा गगन हो अपना। जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना। जगत परिवार हो अपना हमारा सत्य हो सपना। जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो। जहां समता की सरिता अनवरत निर्द्वंद बहती हो। बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो। बिना कुछ भेद के हर जीव जन में शांति रहती हो। परम कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं। परख कर आत्मबल हम वेगवत तूफान बन जाएं। तिमिर को भेद कर हम मनुज से भगवान बन जाएं। अंधेरा चीर कर हम मनुज से भगवान बन जाएं। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। उठो जागो बढ़ो आगे समय हमको बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजयनंद तिवारी का काव्य पाठ और अब सुनते हैं वसंत सागर गाय को।
2: नमस्कार। कविता का शीर्षक है धरती का आंचल है जल। धरती का आंचल है जल और प्यास इतनी आदिम कि बुझती नहीं। धरती ने मेघों से गुहार लगाई। गुहार लगाई पहाड़ों से मैदानों से। गुहार लगाई कि खोलो नदियों के कल्ले सोते झीलों की झिर्री खोलो। खोलो कि प्यासा न रहे जीवन।

0: धरती पर पसरा रहे जल कि जैसे फैला हो माँ का आंचल, धरती का आंचल है जल। अगली कविता का शीर्षक है आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप। आज मैंने देखा एक सूखा नलकूप, आज ही देखी पालक मुरझाई हुई और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। आज ही मैंने देखी पालक मुरझाई हुई और देखा एक केला रखा रखा पिचक गया था। देखा कि भीतर पानी न हो और छुअर न हो पानीदार, जंग खा ही जाता है भीतर चाहे जितना हो लोहा। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी है पहिया होना। बहुत जरूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। बहुत ज़रूरी होता है गतिमान होना, पहिया हो जाना। कमीज से टूटा बटन पहिया बन, भाग नहीं पाता है इधर उधर, धर दबोच टांग दिया जाता है पुनः मजबूत, फिर पिट पिट कर खुद के टूट कर बिखर जाने पर कमीज के फटते दम तक। हिसाब किताब की सनक में क्षण क्षण खन खन खनकते सिक्के, वितरागी हो जाते हैं कुछ अचानक, आदमी के हाथों छिटक कर पहिया बन मुक्ति की राह पर अग्रसर। डूब जाते हैं गहरी नाली किसी सिवेज में, ओझल हो जाते हैं गहरे किसी दर्रे दरार। आदमी की उघाड़ और हिसाब किताब की खनकती सांस संभाल के कई किस्से कहानियाँ अक्सर मैं सुनता हूँ, भागता हूँ पीछे पीछे पहिया बन भागते हुए बटन और सिक्कों से। अगली कविता का शीर्षक है पिता से सुंदर। वह अपने पिता से कहीं ज़्यादा सुंदर था, चॉकलेटी फिल्मी अभिनेता सा, चेहरा नवनीत रुई की मानिंद, मुलायम हाथ चांदी जैसे उजले पाँव, स्यो फल बोल दें तो हर्ज नहीं ऐसे कपोल, घर से कार और कार से दफ्तर तक सब वातानुकूलित। मगर एक फांस थी जो हरदम चुपती थी उसे कि पिता से उसके नाक नक्श यूं तो मिलते हैं बहुत कुछ, कद भी पिता से ऊंचा लेकिन वह हो न सका पिता सा सुंदर। मसलन पैदल चलते पिता को काला ढांड बना दिया था आग उगलते सूरज ने, पर सूरज को उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया, बल्कि नमस्कार करते रहे सिर झुकाकर जीवन भर। सर्दियों में बनियान बुशर्ट और फटी स्वेटर का पीठ का हिस्सा कल लेते थे छाती पर, और बड़ी गर्म जोशी से कहते ठंड का बार कभी नहीं चलता ढकी छाती पर। गोदड़ी ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत तीन तीन रजाइयों के, पुराने छाते के सुराखों से अलग गिरती बारिश की धार, किंतु तर बतर पिता इस बात पर खुश रहे सदा कि कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना। सिटी बस की पायदान पर पांव रखते रखते हर बार खुद को रोक लेते हैं और हाथों में मेथिया पालक की गड्डी लिए चप्पल फटकारते पिता घर लौट आते हैं मुस्कुराते हुए। पर उसे बार बार खोट नज़र आती है अपनी सुंदरता में, हालांकि उसे कितना तो समझाया भाई बहनों दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि कहीं वह ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से। हालांकि उसे कितना ही समझाया भाई बहन दोस्तों ने, समझाया कि बाप से बढ़कर होता है बेटा, कि वह कहीं ज़्यादा सुंदर है उसके पिता से, लेकिन वह हर बार ठंडी सांस छोड़ता और कहता पपीते के बीज होता है, हरगिज़ तो नहीं हो सकता काली मिर्च का दाना।
1: वसंत सकरगाय के काव्य पाठ के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर अब समाप्त होता है। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म है श्रीमान सत्यवादी।

और अब सुनते हैं मुकेश की ही आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है योगेश ने। फिल्म है पल दो पल का साथ।

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म छोटी सी बात का गीत। इस गीत को लिखा था योगेश ने और संगीत सलिल चौधरी का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं धारावाहिक जादूगर को सलाम। आज प्रस्तुत है इसकी 12वीं कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 12वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी, नसीहतों का दफ्तर का नाट्य रूपांतरण। बाबू अक्षय कुमार पटना के जाने माने वकील थे। बड़े वकीलों में उनकी गिनती हुआ करती थी। बस ये समझा जाए कि राय बहादुरी के खिताब के करीब पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई खानदानी रईस थे।

0: इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इनके संघर्ष और कामयाबी की मिसालें शहर में चर्चा का विषय थीं।
1: अरे बीए में थर्ड डिवीजन से पास हो गए और वो भी 2 साल में, तो कौन सा तीर मार लिया। उन्हें देखो जिन्हें पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी भी नसीब नहीं थी, सड़क पर लगे लैंप शेड की रोशनी में पढ़ा करते थे और कभी कभी तो जुगनू की रोशनी में भी सबक याद किया करते थे। जी हाँ, मैं शहर के मशहूर वकील बाबू अक्षय कुमार की ही बात कर रहा हूँ। और एक आप हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हुए भी कुछ नहीं पढ़ा जाता।
2: उनके घर में तो खाने तक को भी नहीं था।
1: नसीब लेकर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। श्रीमती जी अपने लाडले को समझाएं, उसके लिए जिस्म को तपाया जाता है, गलाया जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आदमी कुछ बन पाता है। बीज जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता, पेड़ नहीं फूटता, पत्ते नहीं लगते, फल नहीं आता।
0: बाबू अक्षय कुमार का शुरुआती सफर तो संघर्षमय रहा ही। वकालत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, लेकिन शीघ्र ही परिश्रम और लगन से वो समय भी आ गया जब वही काला कोट कामधेनु साबित हुआ। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उन्हें वो दर्जा मिलने लगा। बड़े बड़े जलसों में सभापति बनने का न्योता आने लगा। ये अक्षय कुमार के जीवन का वो समय था जब सारी खुशियां उनके कदम चूम रही थीं।
3: सभी मेहमान आ चुके हैं, मगर अभी तक हमारे खास मेहमान अक्षय बाबू नहीं दिखाई दिए।
4: जी हाँ, उन्हीं का इंतजार हो रहा है।
5: अरे साहब, किसी मुकदमे की तैयारी में उलझे होंगे।
2: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के जलसे की पहली स्पीच तो उन्हीं से ही शुरू होनी है।
5: अरे लीजिए, आ गए वकील साहब, आइए आइए। शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर।
6: दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं हम सब के हर दिल अजीज, हमारे प्यारे दोस्त और शहर के जाने माने वकील अक्षय कुमार जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पे आकर हमारे नौजवानों के लिए 2 शब्द कहें और ये बताएं कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से उन्होंने जीवन का ये सफर तय किया और इस ऊंचाई तक पहुंचे। अक्षय कुमार जी।
7: दोस्तों, आप सभी और घोष बाबू सम्मान के पात्र हैं जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूं कि कुछ लोग भाग्य को बनाते हैं और कुछ लोगों को भाग्य बना देता है। मैं पहले किस्म के लोगों में से हूं। हमारे शहर, समाज और देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि स्वयं के कर्म और कड़े परिश्रम पर विश्वास करना होगा। मैं सभी नौजवानों में यही जज्बा देखना चाहता हूं।
4: वाह वाह वाह, कितना अच्छा बोलते हैं अक्षय बाबू।
8: इनकी शादी हो गई है क्या?
4: अभी नहीं, जीवन की भागदौड़ में शादी करने की फुर्सत ही कहाँ मिली अभी तक।
8: लेकिन यह सही समय है, अक्षय बाबू को अब विवाह कर लेना चाहिए।
0: समय बीतता रहा, अदालत से कचहरी, कचहरी से घर, घर से महफिल और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब हर कामयाब इंसान की तरह अक्षय बाबू के जीवन में भी उनके हम सफर का आगमन हुआ। हेमवती बेहद हसीन और हसमुख औरत थी।
2: जाने मन, मैं आपसे कुछ पूछूं, इजाजत है?
7: हाँ हाँ जाने मन, हम भी तो यही चाहते हैं कि कुछ आप अपनी कहें, कुछ हम अपनी कहें।
2: हम चाहते हैं कि आज शाम को हम लोग नुमाइश देखने चलें।

0: अच्छा,
1: शादी हुए हमें इतना समय गुजर गया, देखो ना हम कहीं घूमने फिरने बाहर गए ही नहीं अब तक।
0: अब बात यह है प्रिय कि काम की व्यस्तताओं में कहीं घूमने फिरने का ख्याल ही नहीं आया। और नुमाइश, नुमाइश में क्या रखा है? कितनी भीड़ भाड़ होगी वहाँ, मेरा तो दम घुटता है ऐसे माहौल में। क्यों ना हम घर में ही कोई आयोजन रख लें, मेरा मतलब है कि मनोरंजन कर लें।
1: ठीक है, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, रहने दीजिए।
0: अरे अरे अरे अरे, अब लगता है आप बुरा मान गई। अरे सुनो तो, चली गई। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी है। अरे कौड़ियों को दांत से पकड़ना पड़ा है, वो तो मैं बालों में खिजाब भी इसलिए लगाता हूं कि मुझे इनका कुछ ख्याल आ जाता है। मेरी नजर में ये फिजूल खर्ची से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है प्रियवर, चलते हैं नुमाइश के लिए, आप तैयार रहना।
1: रहने दीजिए रहने दीजिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। मेरी बहनों को देखो कितना खुलकर खर्च करती हैं, आए दिन खरीदारी और सैर सपाटे करती हैं। उनके पति तो उन्हें मना नहीं करते, और एक हमारे साहब है।
0: जान तुम मुझे समझ नहीं सकी। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि कल हमें घोष बाबू की पार्टी में तो जाना ही है, फिर क्यों ना कल ही चला जाए। और हाँ याद आया, वहाँ आपने भी तो ड्रामे में हिस्सा लिया है ना।
1: क्या मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने 4 पैसे बचाने की फिराक में हैं? साहब मैं आपकी खातिर ही तो घूमने के लिए कह रही थी, मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती थी और उसके लिए मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं।
0: ये तो समझती है कि पैसा जैसे पेड़ पर लगता है। हेमू, आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। ये बालों में जूड़ा, ये गजरा, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे लगता है नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। कह देता हूं आज तो आप सबके दिलों पर बिजलियां गिराएंगी, बिजलियां। बड़ी कीमती साड़ी है, जरूर मायके सिलाई होंगी, और बनाओ श्रृंगार पर भी काफी खर्च हुआ होगा, सब बेकार का खर्चा है, पर किया क्या जाए, इनसे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। कहीं फिर से बुरा मान गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सब्र से ही काम लेना चाहिए। जी चाहता है प्रिय तुम्हारा हाथ चूम लूं।
1: जाइए भी, जल्दी से तैयार हो जाइए, ड्रामे के लिए देर हो रही है। अरे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। जनाब तारीफ तो ऐसे कर रहे थे जैसे खर्च करने के लिए तपाक से मेरे हाथ में रुपए थमा देंगे, लेकिन मैं भी इनसे एक कदम आगे ही हूँ, साहब को जल्दी ही पता लग जाएगा।